होई थी सी, जो तू दे सोई हो पाई रहाओ। सब तेरी तू सबने त्याया, जिसनों कृपा करह तिन नाम रता।

सारी सेवकन को सैव गुण सुख दियो सतरन को पलमो बाद कियो घाट घाट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पशानत चीटी ते कुंच

के सुखी। एक एक की पीर पशान घट घट के पट पट की जान। जब उदकर्ख करा कर तारा प्रजा धरत तब देह अपारा। जब अकर्ख करत हो कब हूँ तुम मैं मिलत देह धर सब हूँ।

असिख संगरो दुष्ट जिते उठवत उत्पाता सकल मलेश करो रण खाता जे अस तुज तब सरनी परे तिनके दुष्ट दुख तो हवा मरे।

गगन में थाल राव चंद दीपक बने तारका मंडल जनक मोती धूप मल्यान लो पवन चवरो करे सगल बंदराए फुलंत ज्योति कैसी आरती होए पव खंडना तेरी आरती अनहता सबदवा जंत भेरी रहाओ सहस तब नैन नन नैन है तोहे कहो सहस मूर्त नना एक तोही सहस पद बिमल नन एक पद गंध बिन सहस तब गंध विचलत मोही सब मैं जोत जोत है सोए तिसद चानन सब मैं चानन होए गुरसाखी जोत प्रगट होए जोत सुभावै सो आरती होए हर चरण कवल मकरंद लोभित मनो अनदन मोहे आही प्यासा कृपा जल देह नानक सारिंग कौ होए जाते तेरे नाय बासा राग गौड़ी पूर्वी महला चौथा काम क्रोध नगर बहु भरिया मिल साधु खंडल खंडा हे पूर्व लिखत लिखे गुर पाया मन हर लिव मंडल मंडा हे कर साधु अंजली पुन वड्डा हे कर डंडौत पुन वड्डा हे रहाओ साकत हर रस साध न जान।

नमः जुगाद गुरे नमः सत गुरे नमः श्री गुरुदेवये नमः अष्टपदी सिमरो सिमर सिमर सुख पावो कल कलेश तन माहि मिटावो सिमरो जास दिसंभर एक नाम जपत अगंत अनेक वेद पुराण सिमरत सुधाखर कीने राम नाम एक आखर किनका एक जिस जीव सावै ताकि महिमा गनी ना आवै कांखी एक दर्श तुहारो नानक उन संग मोहे उदारो सुखमनी सुख अमृत प्रभ नाम भक्त जना के मन विश्राम रहाओ प्रभ के सिमरन गर्भ ना बसै प्रभ के सिमरन दुख जम नसै प्रभ के सिमरन काल पर हरै प्रभ के सिमरन दुश्मन तरै प्रभ सिमरत कछ बिघन ना लागै प्रभ के सिमरन अनदिन जागै प्रभ के सिमरन भौ ना व्यापै प्रभ के सिमरन दुख ना संतापै प्रभ का सिमरन साध कै संग सर्व निदान नानक हर रंग प्रभ के सिमरन रिद्ध सिद्ध नौ नित प्रभ के सिमरन ज्ञान ध्यान तत् बुद्ध प्रभ के सिमरन जप तप पूजा प्रभ के सिमरन बिनसै दूजा प्रभ के सिमरन तीर्थ इशनानी प्रभ के सिमरन दरगह मानी प्रभ के सिमरन होय सो फला प्रभ के सिमरन सुफल फला से सिमरह जिन आप सिमराए नानक ताके लागो पाए प्रभ का सिमरन सब ते ऊंचा प्रभ के सिमरन उधरे मूचा प्रभ के सिमरन तृष्णा बुझै प्रभ के सिमरन सब के सुझै प्रभ के सिमरन नाही जम त्रासा प्रभ के सिमरन पूरन आसा प्रभ के सिमरन मन की मल जाए अमृत नाम रिद माहे समाए प्रभ जी बस है साध की रसना नानक जन का दासन दसना प्रभ को सिमरह से तनवंते प्रभ को सिमरह से पतवंते प्रभ को सिमरह से जन परवान प्रभ को सिमरह से पुरख प्रधान प्रभ को सिमरह से बेमोहताजे प्रभ को सिमरह से सर्व के राजे प्रभ को सिमरह से सुखवासी प्रभ को सिमरह सदा अविनाशी सिमरन ते लागे जिन आप दयाला नानक जन की मंगैर वाला प्रभ को सिमरह से पर उपकारी प्रभ को सिमरह तिन सद बलिहारी प्रभ को सिमरह से मुख सुहावे प्रभ को सिमरह तिन सुख बिहावै प्रभ को सिमरह तिन आत्म जीता प्रभ को सिमरह तिन निर्मल रीता प्रभ को सिमरह तिन आनंद कनेरे प्रभ को सिमरह बसह हर नेरे संत कृपा ते अनदिन जाग नानक सिमरन पूरै भाग प्रभ कै सिमरन कारज पूरे प्रभ कै सिमरन कबहु न चूरे प्रभ कै सिमरन हर गुण बानी प्रभ कै सिमरन सहज समानी प्रभ कै सिमरन निहचल आसन प्रभ कै सिमरन कमल बिगासन प्रभ कै सिमरन अनहद चुनकार सुख प्रभ सिमरन का अंत ना पार सिमरह से जन जिनको प्रभ मया नानक तिन जन सरनी पया हर सिमरन कर भगत प्रगटाए हर सिमरन लग वेद उपाय हर सिमरन पय सिद्ध जति दाते हर सिमरन नीच चहु कुंट जाते हर सिमरन तारी सब तरना सिमर सिमर हर कारण करना हर सिमरन कियो सगल अकारा हर सिमरन मह आप निरंकारा कर कृपा जिस आप बुझाया नानक गुरमुख हर सिमरन तिन पाया सलोक दीन दर्द दुख पंजना कट कट नाथ अनाथ शरण तुम्हारी आयो नानक के प्रभ साथ अष्टपदी जह मात पिता सुत मीत ना पाई मन उहा नाम तेरा संग सहाई जह महाभयान दूत जम दला तह केवल नाम संग तेरा चला जह मुश्किल होवे अत पारी हर को नाम खिन माहि उदारी अनेक पुनः चरण करत नहीं तरह हर को नाम कोट पाप पर हरै गुरमुख नाम जपहु मन मेरे नानक पावहु सुख कनेरे सगल सृष्ट को राजा दुखिया हर का नाम जपत होए सुखिया लाख करोरी बंध ना परै हर का नाम जपत निस्तरै अनक माया रंग तिख ना बुझावै हर का नाम जपत आघावै
ਜਿਹੇ ਮਾਰਗ ਇਹੋ ਜਾਤ ਇਕੇਲਾ ਤਹਿ ਹਰ ਨਾਮ ਸੰਗ ਹੋਤ ਸੁਹੇਲਾ ਐਸਾ ਨਾਮ ਮਨ ਸਦਾ ਧਿਆਈਐ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਪਰਮ ਗਤ ਪਾਈਐ ਛੂਟਤ ਨਹੀਂ ਕੋਟ ਲੱਖ ਬਾਹੀ ਨਾਮ ਜਪਤ ਤਹਿ ਪਾਰ ਪਰਾਹੀ ਅਨਕ ਬਿਘਨ ਜਹ ਆਏ ਸੰਘਾਰੈ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਤਤਕਾਲ ਉਧਾਰੈ ਅਨਕ ਜੂਨ ਜਨਮੈ ਮਰ ਜਾਮ ਨਾਮ ਜਪਤ ਪਾਵੈ ਬਿਸਰਾਮ ਹੋ ਮੈਲਾ ਮਲ ਕਬ ਹੋ ਨਾ ਧੋਵੈ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਕੋਟ ਪਾਪ ਖੋਵੈ ਐਸਾ ਨਾਮ ਜਪੋ ਮਨ ਰੰਗ ਨਾਨਕ ਪਾਈਐ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਜਿਹ ਮਾਰਗ ਕੇ ਗਨੇ ਜਾਹੇ ਨ ਕੋਸਾ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਊਹਾਂ ਸੰਗ ਤੋਸਾ ਜੀ ਪੈਂਡੈ ਮਹਾਂ ਅੰਧ ਗੁਬਾਰਾ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਸੰਗ ਉਜੀਆਰਾ ਜਹਾਂ ਪੰਥ ਤੇਰਾ ਕੋ ਨਾ ਸਿਆਨੂ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਤਹਿ ਨਾਲ ਪਛਾਨੂ ਜਹ ਮਹਾ ਭਿਆਨ ਤਪਤ ਬਹੁ ਕਾਮ ਤਹਿ ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਕੀ ਤੁਮ ਉਪਰ ਛਾਮ ਜਹਾਂ ਤ੍ਰਿਖਾ ਮਨ ਤੁਝ ਆਕਰਖੈ ਤਹਿ ਨਾਨਕ ਹਰ ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਰਖੈ ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੀ ਬਰਤਨ ਨਾਮ ਸੰਤ ਜਨਾ ਕੈ ਮਨ ਬਿਸਰਾਮ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਦਾਸ ਕੀ ਓਟ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਉਧਰੇ ਜਨ ਕੋਟ ਹਰ ਜਸ ਕਰਤ ਸੰਤ ਦਿਨ ਰਾਤ ਹਰ ਹਰ ਔਖਦ ਸਾਧਕ ਮਾਤ ਹਰ ਜਨ ਕੈ ਹਰ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਜਨ ਕੀ ਨੋ ਦਾਨ ਮਨ ਤਨ ਰੰਗ ਰਤੇ ਰੰਗ ਏਕੈ ਨਾਨਕ ਜਨ ਕੈ ਬਿਰਤ ਵਿਵੇਕੈ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਜਨ ਕੋ ਮੁਕਤ ਜੁਗਤ ਹਰ ਕੈ ਨਾਮ ਜਨ ਕੋ ਤ੍ਰਿਪਤ ਭੁਗਤ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਜਨ ਕਾ ਰੂਪ ਰੰਗ ਹਰ ਨਾਮ ਜਪਤ ਕਬ ਪਰੈ ਨਾ ਭੰਗ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਜਨ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ਹਰ ਕੈ ਨਾਮ ਜਨ ਸੋਭਾ ਪਾਈ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਜਨ ਕੋ ਭੋਗ ਜੋਗ ਹਰ ਨਾਮ ਜਪਤ ਕਛ ਨਾਹੀ ਬਿਯੋਗ ਜਨ ਰਾਤਾ ਹਰ ਨਾਮ ਕੀ ਸੇਵਾ ਨਾਨਕ ਪੂਜੈ ਹਰ ਹਰ ਦੇਵਾ ਹਰ ਹਰ ਜਨ ਕੈ ਮਾਲ ਖਜੀਨਾ ਹਰ ਤਨ ਜਨ ਕੋ ਆਪ ਪ੍ਰਭ ਦੀਨਾ ਹਰ ਹਰ ਜਨ ਕੈ ਓਟ ਸਤਾਣੀ ਹਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜਨ ਅਵਰ ਨਾ ਜਾਣੀ ਓਤ ਪੋਤ ਜਨ ਹਰ ਰਸ ਰਾਤੇ ਸੁਨ ਸਮਾਧ ਨਾਮ ਰਸ ਮਾਤੇ ਆਠ ਪਹਿਰ ਜਨ ਹਰ ਹਰ ਜਪੈ ਹਰ ਕਾ ਭਗਤ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਛਪੈ ਹਰ ਕੀ ਭਗਤ ਮੁਕਤ ਬਹੁ ਕਰੇ ਨਾਨਕ ਜਨ ਸੰਗ ਕੇਤੇ ਤਰੇ ਪਾਰ ਜਾਤ ਇਹੋ ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਕਾਮ ਧੇਨ ਹਰ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਮ ਸਭ ਤੇ ਉਤਮ ਹਰ ਕੀ ਕਥਾ ਨਾਮ ਸੁਨਤ ਦਰਦ ਦੁਖ ਲਥਾ ਨਾਮ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਸੰਤ ਰਿਦਵਸੈ ਸੰਤ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੁਰਤ ਸਭ ਨਸੈ ਸੰਤ ਕਾ ਸੰਗ ਵਡ ਭਾਗੀ ਪਾਈਐ ਸੰਤ ਕੀ ਸੇਵਾ ਨਾਮ ਧਿਆਈਐ ਨਾਮ ਤੁਲ ਕਛ ਅਵਰ ਨਾ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਪਾਵੈ ਜਨ ਕੋਏ ਸਲੋਕ ਬਹੁ ਸਾਸਤਰ ਬਹੁ ਸਿਮਰਤੀ ਦੇਖੇ ਸਰਬ ਟੰਡੋਲ ਪੂਜਸ ਨਾਹੀ ਹਰ ਹਰੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਅਮੋਲ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਜਾਪ ਤਾਪ ਗਿਆਨ ਸਭ ਧਿਆਨ ਖਟ ਸ਼ਾਸਤਰ ਸਿਮਰਤ ਵਖਿਆਨ ਜੋਗ ਅਭਿਆਸ ਕਰਮ ਧਰਮ ਕਿਰਿਆ ਸਗਲ ਤਿਆਗ ਬਨ ਮਧੇ ਫਿਰਿਆ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੀਏ ਬਹੁ ਜਤਨਾ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਹੋਮੇ ਬਹੁ ਰਤਨਾ ਸਰੀਰ ਕਟਾਏ ਹੋਮੈ ਕਰ ਰਾਤੀ ਵਰਤਨੇ ਕਰੈ ਬਹੁ ਭਾਤੀ ਨਹੀਂ ਤੁਲ ਰਾਮ ਨਾਮ ਵਿਚਾਰ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਜਪੀਐ ਇੱਕ ਬਾਰ ਨੌ ਖੰਡ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਫਿਰੈ ਚਿਰ ਜੀਵੈ ਮਹਾ ਉਦਾਸ ਤਪੀ ਸਰਥੀ ਵੈ ਅਗਨ ਮਾਹੀ ਹੋਮਤ ਪ੍ਰਾਨ ਕਨਿਕ ਅਸ ਵਹਿ ਵਰ ਭੂਮ ਦਾਨ ਨਿਓਲੀ ਕਰਮ ਕਰੈ ਬਹੁ ਆਸਨ ਜੈਨ ਮਾਰਗ ਸੰਜਮ ਅਤ ਸਾਧਨ ਨਿਮਖ ਨਿਮਖ ਕਰ ਸਰੀਰ ਕਟਾਵੈ ਤੋ ਭੀ ਹੋਮੈ ਮੈਲ ਨਾ ਜਾਵੈ ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਸਮਸਰ ਕਛ ਨਾਹੇ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਜਪਤ ਗਤ ਪਾਹੇ ਮਨ ਕਾਮਨਾ ਤੀਰਥ ਦੇਹ ਛੁੱਟੈ ਗਰਭ ਗੁਮਾਨ ਨਾ ਮਨ ਤੇ ਹੁੱਟੈ ਸੋਚ ਕਰੈ ਦਿਨਸ ਅਰ ਰਾਤ ਮਨ ਕੀ ਮੈਲ ਨਾ ਤਨ ਤੇ ਜਾਤ ਇਸ ਦੇਹੀ ਕੋ ਬਹੁ ਸਾਧਨਾ ਕਰੈ ਮਨ ਤੇ ਕਬਹੂ ਨਾ ਬਿਖਿਆ ਟਰੈ ਜਲ ਧੋਵੈ ਬਹੁ ਦੇਹ ਅਨੀਤ ਸੁਧ ਕਹਾ ਹੋਏ ਕਾਚੀ ਭੀਤ ਮਨ ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਊਚ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਉਧਰੇ ਪਤਿਤ ਬਹੁ ਮੂਚ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਪ ਜਮ ਕਾ ਭਉ ਵਿਆਪੈ ਅਨਕ ਜਤਨ ਕਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨਾ ਤ੍ਰਾਪੈ ਭੇਖ ਅਨੇਕ ਅਗਨ ਨਹੀਂ ਬੁਝੈ ਕੋਟ ਉਪਾਵ ਦਰਗਹਿ ਨਹੀਂ ਸਿਝੈ ਛੂਟਸ ਨਾਹੀ ਊਬ ਪਿਆਲ
मोहे व्याप है माया जाल, अवर करतूत सगली जम डाना, गोविंद भजन बिन तिल नहीं माना, हर का नाम जपत दुख जाए, नानक बोला सहज सुभाय, चार पदार्थ जे को मांगे साध जना की सेवा लागे, जे को अपना दुख मिटावे हर हर नाम हृदय साध गावे, जे को अपनी शोभा लोरे साध संग एह होमै छोरे, जे को जन्म मरण ते डरे साध जना की शरणी परे, जिस जन को प्रभ दर्श प्यासा नानक ताके बल बल जासा, सगल पुरख मह पुरख प्रधान साध संग जा का मिटे अभिमान, आपस को जो जाने नीचा सो गनिय सब ते ऊंचा, जा का मन होए सगल की रीना, हर हर नाम तिन काट काट चीना, मन अपने ते बुरा मिटाना पेखे सगल श्रेष्ठ साजना, सुख दुख जन समदृष्टिता नानक पाप पुन नहीं लेपा, निर्तन को तन तेरो नाओ, निथावे को नाओ तेरा थाओ, निमाने को प्रभ तेरो मान, सगल कटा को देवो दान, करन करावन हार स्वामी सगल कटा के अंतर जामी, अपनी गत मित जान हो आपे अपन संग आप प्रभ राते, तुमरी उस्त तुम ते होए नानक अवर न जानस कोए, सर्व धर्म मह श्रेष्ठ धर्म हर को नाम जप निर्मल कर्म, सगल क्रिया मह उत्तम क्रिया साध संग दुर्मत मल हिरिया, सगल उदम मह उदम भला हर का नाम जपो जी सदा, सगल बानी मह अमृत बानी हर को जस सुन रसन बखानी, सगल थान ते ओ उत्तम थान नानक जे घट वसै हर नाम सलोक, निर्गुण यार यानिया सो प्रभ सदा समाल, जिनकी आ तिस चीत रख नानक निभही नाल, अष्टपदी रमैया के गुण चेत पुरानी, कवन मूल ते कवन दृष्टानी, जिन तू साज सवार सिंगारिया गर्भ अगन महजन उबारिया, बार व्यवस्था तुझे प्यारे दूध पर जोवन भोजन सुख सूध, बिरद पया ऊपर साख सैन मुख अपयाओ बैठ को दैन, एहो निर्गुण गुण कशु न बूझे बख्श ले हो तो नानक सीझे, जेह प्रसाद तर ऊपर सुख बस है सुत प्रात मीत बनिता संघस है, जेह प्रसाद पी वह शीतल जला सुखदाई पवन पावक अमुला, जेह प्रसाद भोग है सब रसा सगल समग्री संग साथ बसा, दीने हस्त पाव कर्ण नेत्र रसना तिसह त्याग अवर संग रचना, ऐसे दोख मूड अंध ब्यापे नानक काढ लेहो प्रभ आपे, आद अंत जो रखन हार तिस स्यों प्रीत ना करै गवार, जाकी सेवा नव निध पावै तां स्यो मूड़ा मन नहीं लावै, जो ठाकुर सद सदा हजूरे तां को अंधा जानत दूरे, जाकी टहल पावै दरगह मान तिसह बिसारै मुग्ध अजान, सदा सदा एहो भूलन हार नानक रखन हार अपार, रतन त्याग कौडी संग रचै साच छोड़ झूठ संग मचै, जो छड़ना सो अस्थिर कर मानै जो होवन सो दूर परानै, छोड़ जाए तिसका श्रम करै संग सहाई तिस पर हरै, चंदन लेप उतारै तोए गर्दप प्रीत पसम संग होए, अंधकूप मह पतित बिकराल नानक काढ लेहो प्रभ दयाल, करतूत पशु की मानस जात लोक पचारा करे दिन रात, बाहर पेख अंतर माल माया छपस नाहे कछ करे छपाया, बाहर ज्ञान ध्यान इशनान अंतर व्यापे लोभ सुवान, अंतर अगन बाहर तन स्वाहा गल पाथर कैसे तरे अथहा, झांके अंतर बसे प्रभ आप नानक तेजन सहज समात, सुन अंधा कैसे मार्ग पावै कर गहले हो ओढ़ निभावै, कहां बुझारत बुझै डोरा निस्कहियै तो समझै पोरा, कहां बिसन पद गावै गुंग जतन करै तो पी सुर भंग,
कह पिंगुल पर्वत पर पवन नहीं होत उहां उस गवन करतार करुणा में दीन बेंती कर नानक तुमरी कृपा तर संग सहाई सो आवै ना चीत जो बैराई ता स्यो प्रीत बलुआ के ग्रह पीतर बसै आनंद केल माया रंग रसै दृढ़ कर मन मन प्रतीत काल ना आवै मूढ़े चीत बैर विरोध काम क्रोध मोह झूठ विकार महा लोभ त्रोह यहु जुगत बिहानी कई जन्म नानक राख ले हो आपन कर करम तू ठाकुर तुम पहरदास जियो पिंड सब तेरी रास तुम मात पिता हम बारिक तेरे तुमरी कृपा मह सुख कनेरे कोई न जान तुमरा अंत ऊचे ते ऊचा भगवंत सगल समग्री तुमरे सूत्र तारी तुम ते होए सो आज्ञाकारी तुमरी गत मित तुम ही जानी।

सी जई बिन नाव पत जाए। अष्टपदी दस वस्तु ले पच पावे एक वस्त कारण बिखोट गवावे एक पी ना दे दस पी हिर ले तो मूढ़ा कहो कहा करे। जिस ठाकुर स्यों नाही चारा ताको की जय सद नमस्कारा झाके मन लागा प्रभ मीठा सर्व सुख ताहू मन उठा। जिस जन अपना हुक्म मनाया सर्व थोक नानक तिन पाया अगंत साहु अपनी देरा स्थात पीत बरत अनद उलास अपनी अमान कछ बहुर साहुले अज्ञानी मन रोस करे। अपनी प्रतीत आप ही खोवे बहुर उसका विश्वास न होवे जिसकी बस्त तिस आगे रखे प्रभ की आज्ञा मान माथे उसते चौगुन करे निहाल नानक साहिब सदा दयाल। अनेक पांत माया के हेत सर पर होवत जान अनेत बिरख की छाया स्यों रंग लावे ओह बिन सह ओह मन पछतावे जो दी सह सो चालन हार लपट रहे ओ तह अंध अंधार बटाऊ स्यों जो लावे नेहे ताको हाथ न आवे कहे मन हर के नाम की प्रीत सुखदाई कर कृपा नानक आप लय लाई। मिथ्या तन तन कुटुंब सबाया मिथ्या होमे ममता माया मिथ्या राज जोगन तन माल मिथ्या काम क्रोध विकराल मिथ्या रथ हस्ती असो वस्त्रा मिथ्या रंग संग माया पेख हस्ता मिथ्या त्रोह मोह अभिमान मिथ्या आपस ऊपर कर्त गुमान अस्थिर भगत साध की शरण नानक जप जप जीव हर के चरण। मिथ्या श्रवण पर निंदा सुनह मिथ्या हस्त पर दर्भ को हिरह मिथ्या नेत्र पेखत पर त्रय रूपाद मिथ्या रसना भोजन अनस्वाद मिथ्या चरण पर विकार को ताव है मिथ्या मन पर लोभ लुभाव है मिथ्या तन नहीं पर उपकारा मिथ्या बास लेत बिकारा बिन बूझे मिथ्या सब पये सफल देह नानक हर हर नाम लय। बिरथी साकत की आर जा साच बिना कह होवत सूचा बिरथा नाम बिना तन अंध मुख आवत ता कह दुर्गंध बिन सिमरन दिन रैन वृथा बिहाये मेघ बिना ज्यों खेती जाए गोविंद भजन बिन बिरथे सब काम ज्यों कृपन के निरार्थ दाम तन तन तेजन जे कट बस्यो हर नाओ नानक ताकै बल बल जाओ। रहत अवर कछ अवर कमावत मन नहीं पीत मुख हूँ गंढ लावत जानन हार प्रभु परबीन बार पेख न कहू पीन अवर उपदेश आप ना कर आवत जावत जन्म मर जिसके अंतर बस निरंकार तिसकी सीख तर संसार जो तुम पाने तिन प्रभ जाता नानक उन जन चरण पराता करो बेंती पार ब्रह्म सब जाने अपना किया आप है माने आप है आप करत निबेरा किसे दूर जनावत किसे बुझावत नेरा उपाव से अनप सगल ते रहत सब कछ जाने आत्म की रहत जिस पावे तिस लय लड़ लाए थान थनंतर रहया समाय सो सेवक जिस कृपा करी निमक निमक जप नानक हरि सलोक। काम क्रोध अर लोभ मोह बिनस जाए अहमेव नानक प्रभ शरणागति कर प्रसाद गुरुदेव। अष्टपदी जिह प्रसाद शक्ति ही अमृत खाहे तिस ठाकुर को रख मन माहे जिह प्रसाद सुगंधत तन लावह तिसको सिमरत परम गत पावह जिह प्रसाद बसह सुख मंदर तिसह त्याए सदा माने अंदर जिह प्रसाद ग्रह संग सुख बसना आठ पहर सिमरोह तिस रसना जिह प्रसाद रंग रस भोग नानक सदा त्याई त्यावन जोग।
जे प्रसाद पाठ पटंबर हंडावहै तिसह त्याग कत अवर लुभावहै। जे प्रसाद सुख सेज सोई जय मन आठ पहर ताका जस गावी जय। जे प्रसाद तुझ सबको मन मुखता को जस रसन बखाना। जे प्रसाद तेरो रहता धर्म मन सदा त्याए केवल पार ब्रह्म। प्रभ जी जपत दरगह मान पावहै नानक पत सेती कर जावहै। जे प्रसाद आरोग कंचन देही लिवलावहो तिस राम स्नेही। जे प्रसाद तेरा ओला रहत मन सुख पावहै हर हर जस कहत। जे प्रसाद तेरे सगल छिद्र ठाके मन सरनी पर ठाकुर प्रभ ताकै। जे प्रसाद तुझको न पहुँचै मन सास सास सिमरोह प्रभ ऊचे। जे प्रसाद पाई दुर्लभ देहे नानक ताकी भगत करे। जे प्रसाद आपूखन पहरी जय मन तिस सिमरत क्यों आलस की जय। जे प्रसाद अस्वहस्त असवारी मन तिस प्रभ को कबहू न बिसारी। जे प्रसाद बाग मिलख तना राख परोए प्रभ अपने मना। जिन तेरी मन बनत बनाई उठत बैठत सदत सहते आई। तिसहते आए जो एक अलख इहा उहा नानक तेरी रख। जे प्रसाद करह पुन बहुदान मन आठ पहर कर तिसका ध्यान। जे प्रसाद तू आचार व्यवहारी तिस प्रभ को सास सास चितारी। जे प्रसाद तेरा सुंदर रूप सो प्रभ सिमरो सदा अनूप। जे प्रसाद तेरी नीकी जात सो प्रभ सिमर सदा दिन रात। जे प्रसाद तेरी पत रहै गुर प्रसाद नानक जस कह। जे प्रसाद सुनह कर्ण नाद जे प्रसाद पे कह बिस्माद। जे प्रसाद बोल है अमृत रसना जे प्रसाद सुख सहजे बसना। जे प्रसाद हस्त कर चल है जे प्रसाद संपूर्ण फल है। जे प्रसाद परम गत पाव है जे प्रसाद सुख सहज समाव है। ऐसा प्रभ त्याग अवर कत लागो हो गुर प्रसाद नानक मन जागो हो। जे प्रसाद तू प्रगट संसार तिस प्रभ को मूल ना मनो बिसार। जे प्रसाद तेरा प्रताप रे मन मूल तू ताको जाप। जे प्रसाद तेरे कार्य पूरे तिस जान मन सदा हजूरे। जे प्रसाद तू पाव है साच रे मन मेरे तू ता स्यो राच। जे प्रसाद सबकी गत होए नानक जाप जपै जप सोए। आप जपाए जपै सो नाओ आप गावाए सो हर गुण गाओ। रब कृपा ते होए प्रगास प्रभु दया ते कमल विगास। प्रभ सो प्रसन्न बसै मन सोए प्रभ दया ते मत उत्तम होए। सर्व निदान प्रभ तेरी मया आपहु कछु न किन्हु लया। जित जित लावहु तित लगहै हर नाथ नानक इनकै कछु न हाथ। सलोक अगम अगाध पार ब्रह्म सोए जो जो कह सो मुक्ता होए। सुन मीता नानक बिनवंता साध जना की अचर्ज कथा। अष्टपदी साध कै संग मुख उजल होत साध संग मल सगली खोत। साध कै संग मिट अभिमान साध कै संग प्रगट सो ज्ञान। साध कै संग बुझे प्रभ नेरा साध संग सब होत निबेरा। साध कै संग पाए नाम रतन साध कै संग एक ऊपर जतन। साध की महिमा वर्ण कौन पुरानी नानक साध की शोभा प्रभ माहे समानी। साध कै संग अगोचर मिलै साध कै संग सदा प्रफुल्लै। साध कै संग आवह बस पंचा साध संग अमृत रस पुंचा। साध संग होए सब की रेन साध कै संग मनोहर बैन। साध कै संग न कतहु तावै साध संग अस्तित मन पावै। साध कै संग माया ते भिन्न साध संग नानक प्रभ सो प्रसन्न। साध संग दुश्मन सब मीत साधु कै संग महापुनीत। साध संग किस्यो नहीं बैर साध कै संग न बीगा पैर। साध कै संग नाही को मंदा साध संग जाने परमानंदा। साध कै संग नाही हो ताप साध कै संग तजै सब आप। आपे जान साध बढ़ाई नानक साध प्रभु बन आई। साध कै संग न कबहू तावै साध कै संग सदा सुख पावै। साध संग बस अगोचर लह साधु कै संग अजर सह।
ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਬਸੈ ਥਾਨ ਊਚੈ, ਸਾਧੂ ਕੈ ਸੰਗ ਮਹਿਲ ਪਹੁੰਚੈ, ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਤਿੜੈ ਸਭ ਧਰਮ, ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਕੇਵਲ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ। ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਪਾਏ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ, ਨਾਨਕ ਸਾਧੂ ਕੈ ਕੁਰਬਾਨ। ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਸਭ ਕੁਲ ਉਧਾਰੈ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਸਾਜਨ ਮੀਤ ਕੁਟੰਬ ਨਿਸਤਾਰੈ, ਸਾਧੂ ਕੈ ਸੰਗ ਸੋ ਧਨ ਪਾਵੈ, ਜਿਸ ਧਨ ਤੇ ਸਭ ਕੋ ਵਰਸਾਵੈ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਧਰਮ ਰਾਏ ਕਰੇ ਸੇਵਾ, ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਸੋਭਾ ਸੁਰ ਦੇਵਾ, ਸਾਧੂ ਕੈ ਸੰਗ ਪਾਪ ਲਾਇਨ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਣ ਗਾਇਨ। ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਸਰਬ ਥਾਨ ਗਮ, ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਸਫਲ ਜਨਮ। ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਕਛ ਕਾਲ, ਦਰਸ਼ਨ ਭੇਟਤ ਹੋਤ ਨਿਹਾਲ, ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਕਲੂਖਤ ਹਰੈ, ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਨਰਕ ਪਰ ਹਰੈ। ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਈਹਾਂ ਊਹਾਂ ਸੁਹੇਲਾ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਬਿਸ਼ਰਤ ਹਰ ਮੇਲਾ, ਜੋ ਇੱਛੈ ਸੋਈ ਫਲ ਪਾਵੈ, ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਨਾ ਬਿਰਥਾ ਜਾਵੈ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਾਧ ਰਿਧ ਬਸੈ, ਨਾਨਕ ਉਧਰੈ ਸਾਧ ਸੁਨ ਰਸੈ, ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਸੁਨੋ ਹਰ ਨਾਉ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਓ, ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਨਾ ਮਨ ਤੇ ਬਿਸਰੈ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਸਰ ਪਰ ਨਿਸਤਰੈ, ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਲੱਗੈ ਪ੍ਰਭ ਮੀਠਾ, ਸਾਧੂ ਕੈ ਸੰਗ ਘਟ ਘਟ ਡੀਠਾ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਭਏ ਆਗਿਆਕਾਰੀ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਗਤ ਭਈ ਹਮਾਰੀ, ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਮਿਟੇ ਸਭ ਰੋਗ, ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਭੇਟੇ ਸੰਜੋਗ। ਸਾਧ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਬੇਦ ਨਾ ਜਾਣੈ, ਜੇਤਾ ਸੁਣੈ ਤੇਤਾ ਬਖਿਆਨੈ, ਸਾਧ ਕੀ ਉਪਮਾ ਤੇ ਹੁਗੁਣ ਤੇ ਦੂਰ, ਸਾਧ ਕੀ ਉਪਮਾ ਰਹੀ ਭਰਪੂਰ। ਸਾਧ ਕੀ ਸੋਭਾ ਕਾ ਨਾਹੀ ਅੰਤ, ਸਾਧ ਕੀ ਸੋਭਾ ਸਦਾ ਬੇਅੰਤ, ਸਾਧ ਕੀ ਸੋਭਾ ਉਚਤੇ ਉੱਚੀ, ਸਾਧ ਕੀ ਸੋਭਾ ਮੂਚ ਤੇ ਮੂਚੀ, ਸਾਧ ਕੀ ਸੋਭਾ ਸਾਧ ਬਨ ਆਈ, ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਪ੍ਰਭ ਭੇਦ ਨਾ ਪਾਈ। ਸਲੋਕ ਮਨ ਸਾਚਾ ਮੁਖ ਸਾਚਾ ਸੋਏ, ਅਵਰ ਨਾ ਪੇਖੈ ਇੱਕ ਸੁਬਿਨ ਕੋਏ, ਨਾਨਕ ਇਹ ਲੱਛਣ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋਏ। ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਦਾ ਨਿਰਲੇਪ, ਜੈਸੇ ਜਲ ਮਹਿ ਕਮਲ ਅਲੇਪ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਦਾ ਨਿਰਦੋਕ, ਜੈਸੇ ਸੂਰ ਸਰਬ ਕੋ ਸੋਖ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਮਾਨ, ਜੈਸੇ ਰਾਜ ਰੰਗ ਕੋ ਲਾਗੈ ਤੁਲਪਵਾਨ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਧੀਰਜ ਏਕ, ਜੋ ਬਸਦਾ ਕੋ ਪੋਦੈ ਕੋ ਚੰਦਨ ਲੇਪ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਇਹ ਗੁਨਾਓ, ਨਾਨਕ ਜਿਉ ਪਾਵਕ ਕਾ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਓ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨਿਰਮਲ ਤੇ ਨਿਰਮਲਾ, ਜੈਸੇ ਮੈਲ ਨ ਲਾਗੈ ਜਲਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਮਨ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਾਸ, ਜੈਸੇ ਧਰੂ ਉਪਰ ਆਕਾਸ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਮਿੱਤਰ ਸਤਰ ਸਮਾਨ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਨਾਹੀ ਅਭਿਮਾਨ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਊਚ ਤੇ ਊਚਾ, ਮਨ ਆਪਣਾ ਹੈ ਸਭ ਤੇ ਨੀਚਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸੇ ਜਨ ਪਏ, ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਪ੍ਰਭ ਆਪ ਕਰੇ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਗਲ ਕੀ ਰੀਨਾ, ਆਤਮ ਰਸ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਚੀਨਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੀ ਸਭ ਉਪਰ ਮਾਇਆ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਤੇ ਕਛ ਬੁਰਾ ਨਾ ਭਇਆ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਦਾ ਸਮਦਰਸੀ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਰਸੀ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬੰਧਨ ਤੇ ਮੁਕਤਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੀ ਨਿਰਬਲ ਜੁਗਤਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਭੋਜਨ ਗਿਆਨ, ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਬ੍ਰਹਮ ਧਿਆਨ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਏਕ ਉਪਰ ਆਸ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਨਹੀਂ ਬਿਨਾਸ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਗਰੀਬੀ ਸਮਾਹਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਉਮਾਹਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਨਾਹੀ ਧੰਦਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਲੈ ਧਾਵਤ ਬੰਧਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਹੋਏ ਸੋ ਭਲਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸੁਫਲ ਭਲਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸੰਗ ਸਗਲ ਉਧਾਰ, ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਜਪੈ ਸਗਲ ਸੰਸਾਰ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਏਕ ਹੈ ਰੰਗ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਬਸੈ ਪ੍ਰਭ ਸੰਗ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਨਾਮ ਆਧਾਰ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਨਾਮ ਪਰਵਾਰ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਦਾ ਸਦ ਜਾਗਤ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਅਹੰਗ ਬੁੱਧ ਤਿਆਗਤ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਮਨ ਪਰਮਾਨੰਦ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਘਰ ਸਦਾ ਆਨੰਦ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਨਿਵਾਸ, ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਨਹੀਂ ਬਿਨਾਸ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬ੍ਰਹਮ ਕਾ ਬੇਤਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਏਕ ਸੰਗਹਿਤਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਹੋਏ ਅਚਿੰਤ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਨਿਰਮਲ ਮੰਤ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਜਿਸ ਕਰੈ ਪ੍ਰਭਾਪ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਬੜ ਪ੍ਰਤਾਪ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਦਰਸ ਬੜ ਭਾਗੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੋ ਬਲ ਬਲ ਜਾਈ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੋ ਖੋਜੈ ਮਹੇਸੁਰ, ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਆਪ ਪਰਮੇਸੁਰ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੀ ਕੀਮਤ ਨਾਹੇ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਸਗਲ ਮਨ ਮਾਹੇ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਕੌਣ ਜਾਣੈ ਭੇਦ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੋ ਸਦਾ ਆਦੇਸ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਕਥਿਆ ਨ ਜਾਏ ਅਧਿਆਖਰ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਰਬ ਕਾ ਠਾਕੁਰ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੀ ਮਿਤ ਕੌਣ ਬਖਾਨਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੀ ਗਤ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਜਾਣੈ,
ब्रह्म ज्ञानी का अंत ना पार, नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार। ब्रह्म ज्ञानी सब श्रेष्ठ का कर्ता, ब्रह्म ज्ञानी सद जीव नहीं मरता। ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुगत जी का दाता, ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरख विधाता। ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ। ब्रह्म ज्ञानी का सगल आकार, ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार। ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी, नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्व का तनी। सलोक उर तार जो अंतर नाम, सर्व में देख भगवान। निमख निमख ठाकुर नमस्कार, नानक ओ अपरस सगल निस्तार। अष्टपदी मिथ्या नाही रसना परस, मन मह प्रीत निरंजन दर्स। पर त्रय रूप न पेख नेत्र, साधकी टहल संत संग हेत। कर्ण ना सुने कहु की निंदा, सबते जान आपस को मंदा। गुर प्रसाद भिख्या पर हर, मन की वासना मन ते टर। इंद्री जित पंच दोख ते रहत, नानक कोट मध्य को ऐसा अपरस। भैसनो सो जिस ऊपर सो प्रसन्न, बिसन की माया ते हुए पिन। कर्म करत हो वह नेह कर्म, तिस वैसनो का निर्मल धर्म। काहू फल की इच्छा नहीं बाचै, केवल भगत कीर्तन संग राचै। मन तन अंतर सिमरन गोपाल, सब ऊपर होवत कृपाल। आप दृढ़ अवर है नाम जपावै, नानक ओह वैसनो परम गत पावै। भगवती भगवंत भगत का रंग, सगल त्याग दुष्ट का संग। मनते मिनस सगला परम, कर पूजा सगल पार ब्रह्म। साध संग पापा मल खोवै, तिस भगवती की मत उत्तम होवै। भगवंत की टहल कर नित नीत, मन तन अर्प बिसन प्रीत। हर के चरण हृदय बसावै, नानक ऐसा भगवती भगवंत को पावै। सो पंडित जो मन पर बोध, राम नाम आत्म है शुद्ध। राम नाम सार रस पीवै, उस पंडित का उपदेश जग जीवै। हर की कथा हृदय बसावै, सो पंडित फिर जोन न आवै। वेद पुराण सिमृत बूझै मूल, सुख मह जान अस्थूल। चहु वरना को दे उपदेश, नानक उस पंडित को सदा आदेश। बीज मंत्र सर्व को ज्ञान, चहु वरना मह जपै को नाम। जो जो जपै तिसकी गत होए, साध संग पावै जन कोए। कर कृपा अंतर उर तारै, पस प्रेत मुगत पाथर को तारै। सर्व रोग का औखद नाम, कल्याण रूप मंगल गुणगाम। काहू जुगत कित न पाइय धर्म, नानक तिस मिलै जिस लिखिया तुर कर्म। जिसका मन पार ब्रह्म का निवास, तिसका नाम सत राम दास। आत्म राम तिस नदरी आया, दास तिसन तन पाए तिन पाया। सदा निकट निकट हर जान, सो दास दरगह प्रवान। अपने दास को आप कृपा करे, तिस दास को सब सोझी परे। सगल संग आत्म उदास, ऐसी जुगत नानक राम दास। प्रभु की आज्ञा आत्म हितावै, जीवन मुख सोव कहावै। तैसा हरक तैसा उस सोग, सदा आनंद तह नहीं वियोग। तैसा सुवर्ण तैसी उस माटी, तैसा अमृत तैसी बिख खाटी। तैसा मान तैसा अभिमान, तैसा रंग तैसा राजान। जो वरताए साई जुगत, नानक ओह पुरख कही है जीवन मुक्त। पार ब्रह्म के सगले ठाओ, जित जित कर राखै तैसा तिन नाओ। आपे करन करावन जोग, प्रपावै सोई फुन होग। पसरे आप होए अनत तरंग, लखे न जाहे पार ब्रह्म के रंग। जैसी मत दे तैसा प्रगास, पार ब्रह्म करता अविनाश। सदा सदा सदा दयाल, सिमर सिमर नानक पहे निहाल। सलोक उस्तत कर है अनेक जन, अंत न पारावार। नानक रचना प्रभ रची, बहुविध अनेक प्रकार। अष्टपदी कई कोट होए पुजारी, कई कोट आचार बिहारी। कई कोट पे तीर्थवासी, कई कोट बन ब्रह्म है उदासी। कई कोट वेद के स्रोते, कई कोट तपी सुर होते। कई कोट आत्म ध्यान तार हैं, कई कोट कव का विचार हैं। कई कोट नवतन नाम त्याव हैं, नानक करते का अंत न पाव हैं। कई कोट पे अभिमानी, कई कोट अंध अज्ञानी। कई कोट कृपण कठोर, कई कोट अपिग आत्म निकोर।
कई कोट पर दर पोहि रहें, कई कोट पर दुख न करहें, कई कोट माया श्रम माही, कई कोट परदेश प्रमाहे, जित जित लाभ हो तित तित लगना, नानक करते की जाना करता रचना, कई कोट सिद्ध जति जोगी, कई कोट राजे रस भोगी, कई कोट पंखी सर्प उपाय, कई कोट पाथर बिरख निपजाए, कई कोट पवन पानी बैसंतर, कई कोट देश भू मंडल, कई कोट शशि अर सूर नक्षत्र, कई कोट देव दानव इंद्र सिर छत्र, सगल समग्री अपने सूत तारा, नानक जिस जिस पावै तिस तिस निस्तार, कई कोट राजस्थान सातक, कई कोट वेद पुराण सिमरत अर्थशास्त्र, कई कोट किए रतन समुद, कई कोट नाना प्रकार जंत, कई कोट किए चिरजीवे, कई कोट गिरी मेर सुवर्ण थीवे, कई कोट जख्य किनर पिसाच, कई कोट भूत प्रेत सूकर मृगाच, सब ते नेर सब हूते दूर, नानक आप अलिप्त रहया पहर पूर, कई कोट पाताल के वासी, कई कोट नरक स्वर्ग निवासी, कई कोट जन्म है जी वह मर है, कई कोट वह जो नी फिर है, कई कोट बैठत ही खाहे, कई कोट काल थक पाहे, कई कोट किए तनवंत, कई कोट माया मह चिंत, जह जह पाणा तह तह राखे, नानक सब किछ प्रभ कह हाथे, कई कोट पये बैरागी, राम नाम संग तिन लिव लागी, कई कोट प्रभ को खोजनते, आत्म मह पार ब्रह्म लहंते, कई कोट दर्शन प्रभ प्यास, तिन को मिलियो प्रभ अविनाश, कई कोट मांगह सत्संग, पार ब्रह्म तिन लागा रंग, जिनको होए आप सो प्रसन्न, नानक ते जन सदा तन तन, कई कोट खानी अरखंड, कई कोट आकाश ब्रह्मांड, कई कोट होए अवतार, कई जुगत कीनो विस्तार, कई बार पसरे उपासार, सदा सदा एक एक अंकार, कई कोट कीने बहु पांत, प्रभते हुए प्रभ माहे समाता का अंत न जाने कोए, आपे आप नानक प्रभ सोए, कई कोट पार ब्रह्म के दास, तिन हो वतातम परगास, कई कोट तत् के बेते सदा निहार हैं एको नेत्रे, कई कोट नाम रस पीम है, अमर पये सद सद ही जीव है, कई कोट नाम गुण गाव है, आत्म रस सुख सहज समाव है, अपने जन को सास सास मारे, नानक ओए परमेश्वर के प्यारे, सलोक करण करण प्रभ एक है, दूसर नाही कोए, नानक तिस बलहारण, जल थल महियल सोए अष्टपदी, करण करावन करने जोग, जो तिस पावे सोई होग, खिन मह थाप उथापन हारा, अंत नहीं किछ पारा वारा, हुक्मे तार अतर रहावै, हुक्मे उपजै हुक्म समावै, हुक्मे ऊंच नीच व्यवहार, हुक्मे अनेक रंग प्रकार, कर कर देखे अपनी वडियाई, नानक सब मह रहया समाई, प्रभ पावै मानुख गत पावै, प्रभ पावै ता पाथर तरावै, प्रभ पावै बिन सास्ते राखै, प्रभ पावै ता हर गुण पाखै, प्रभ पावै ता पतित उधारै, आप करै आपन बीचारै, दुहां सरियां का आप स्वामी, खेलै बिकसै अंतर जामी, जो पावै सो कार करावै, नानक दृष्टि अवर ना आवै, कहो मानुख ते क्या होए आवै, जो तिस पावै सोई करावै, इसके हाथ होए ता सब किछले, जो तिस पावै सोई करे, अनजानत बिखिया मह रचै, जे जानत अपन आप बचै, परमे भूला दह दिस्तावै, निमख माहे चार कुंट फिर आवै, कर कृपा जिस अपनी भगत दे, नानक ते जन नाम मिले, खिन महनीच कीट कौराज, पार ब्रह्म गरीब निवाज, जाका दृष्ट कछु न आवै, तिस तत्काल दह दिस प्रगटावै, जाको अपनी करै बख्शीस, ताका लेखा न गनै जगदीश, जियो पिंड सब तिसकी रास, घट घट पूरन ब्रह्म प्रगास, अपनी बनत आप बनाई, नानक जीव देख बढ़ाई, इसका बल नाही इस हाथ, करण करावन सर्व को नाथ, आज्ञाकारी बपुरा जियो, जो तिस पावै सोई फुन थियो, कबहू ऊंच नीच मह बसै, कबहू सोग हरख रंग हसै, कबहू निंद चिंद व्योहार, कबहू ऊभ आकाश प्याल, कबहू बेता ब्रह्म विचार, नानक आप मिलावन हार, कबहू नृत्य करै बहु पांत, कबहू सोए रह दिन रात,
कबहु महाक्रोध विकराल, कबहु सर्व की होत रवाल, कबहु होए बह बड़ राजा, कबहु भिखारी नीच का साजा, कबहु अपकीर्त मह आवे, कबहु फला फला कहावै, ज्यों प्रभु राखै तिव ही रह, गुर प्रसाद नानक सच कह। कबहु होए पंडित करे बखियान, कबहु मोन धारी लावै ध्यान, कबहु तट तीर्थ इशनान, कबहु से साधक मुख ज्ञान, कबहु कीट हस्त पतंग होए जिया, अनेक जोन परमै परमिया, नाना रूप ज्यों स्वांगी दिखावै, जो प्रभावै तिवै नचावै, जो तिस पावै सोई होए, नानक दूजा अवर ना कोए, कबहु साध संगत एहो पावै, उस स्थान ते बहर न आवै, अंतर होए ज्ञान प्रगास, उस स्थान का नहीं विनास, मन तन नाम रते एक रंग, सदा बस है पार ब्रह्म कै संग, ज्यों जल मह जल आए खटाना, त्यों ज्योति संग ज्योत समाना, मिट गए गवन पाए विश्राम, नानक प्रभ कै सद कुर्बान। सलोक सुखी बसै मसकीनिया, आप निवार तले बड़े बड़े अहंकारिया, नानक गर्भ गले। अष्टपदी जिसके अंतर राज अभिमान, सो नरक पाती होवत स्वान, जो जाना मैं जो बनवंत, सो होवत विष्टा का जंत, आपस को कर्मवंत कहावै, जन्म मर बहुजोन प्रमावै, तन पूम का जो कर गुमान, सो मूर्ख अंधा अज्ञान, कर कृपा जिसके हृदय गरीबी बसावै, नानक इहां मुक्त आगे सुख पावै, तरवंता हो एक कर गरबावै, तृण समान का संग न जावै, बहु लश्कर मानुक ऊपर करे आस, पल पीतरता का होए विनाश, सब ते आप जाने बलवंत, खिन मह होए जाए पसमंत, किसे ना बदा आप अहंकारी, धर्म राय तिस करे खुआरी, गुर प्रसाद जा का मिटे अभिमान, सो जन नानक दरगह प्रवान, कोट कर्म करे हो तारे, श्रम पावे सगले बिरथारे, अनेक तपस्या करे अहंकार, नरक स्वर्ग फिर अवतार, अनेक जतन कर आत्म नहीं द्रवे, हर दरगह कहो कैसे गवे, आपस को जो पला कहावे, तिस है पलाई निकट न आवे, सर्प की रेंजा का मन होए, कहो नानकता की निर्मल सोए, जब लग जान मुझते कछ होए, तब इसको सुख ना ही कोए, जब यह जान मैं किछ करता, तब लग गर्भ जोन मैं फिरता, जब तार को बैरी मीत, तब लग निःचल ना ही चीत, जब लग मोह मगन संग माए, तब लग धर्म राय दे सजाए, प्रभ कृपा ते बंधन टूटे, गुरु प्रसाद नानक हों छूटे, सहस खट्टे लख कोठ तावै, तृप्त नावै माया पाछै पावै, अनेक भोग बिख्या के करै नह तृप्तावै, खप खप मरै बिना संतोख नहीं को राजै, सुपन मनोरथ बिरथे सब काजै, नाम रंग सर्व सुख होए, बट भागी किसै प्राप्त होए, करन करावन आपे आप, सदा सदा नानक हर जाप, करन करावन करने हार, इसके हाथ कहा विचार, जैसी दृष्ट करे तैसा होए, आपे आप आप प्रभ सोए, जो किछ कीनो सो अपने रंग, सब ते दूर सब हु कै संग, बुझे देखे करे विवेक, आप है एक आप है अनेक, मरे न बिन से आवे न जाए, नानक सद ही रह समाए, आप उपदेश समझे आप, आपे रचया सब कै साथ, आप कीनो अपन विस्तार, सब कछ उसका हु करने हार, उसते पिन कहो किछ होए, थान तनंतर एक कै सोए, अपने चलित आप करने हार, कोतक करे रंग अपार, मन में आप मन अपने माही, नानक कीमत कहन ना जाए, सत सत सत प्रभ स्वामी, गुर प्रसाद किने वखियानी, सच सच सच सब कीना, कोट मधे किने बिरले चीना, पला पला पला तेरा रूप, अत सुंदर अपार अनूप, निर्मल निर्मल निर्मल तेरी बाणी, कट कट सुनी श्रवण बखियाणी, पवित्र पवित्र पवित्र पुनीत, नाम जप नानक मन प्रीत, सलोक संत सरन।

संतन घर पाया तज अभिमान लिहो मन मोल राम नाम हृदय महतो लाद खेप संत संचाल अवर त्याग बिख्या जंजाल तन तन कह सब कोय मुख उजल हर दरगह सोए इहो अपार विरला व्यापार नानक ताक सद बलिहार चरण साध के तोए तोए पियो अरब साध को अपना जियो साध की तूर करो इशनान साध ऊपर जाइए कुर्बान साध सेवा वडभागी पाइये साध संग हर कीर्तन गाइये अनेक बिघनते साधु राखे हर गुण गाये अमृत रस चाखे ओट गही संत है दर आया सर्व सुख नानक तेह पाया मृतक को जीवल नहार भूखे को देवत आधार सर्व निदान जाकी दृष्टि माहे पूर्व लिखे का लहना पाहे सब किस तिसका ओह करने जोग तिस बिन दूसर होवा न होग जप जन सदा सदा दिन रहनी सब ते ऊच निर्मल एह करणी कर कृपा जिसको नाम दिया नानक सो जन निर्मल थिया जाके मन गुर की प्रतीत तिस जन आवे हर प्रभ चीत भगत भगत सुनिए तेह लोए जाके हृदय को होए सच करणी सच ता की रहत सच हृदय सत मुख कहत साची दृष्ट साचा आकार सच वर्त साचा पासार पार ब्रह्म जिन सच कर जाता नानक सो जन सच समात।

गृहस्थपति जाचक जन जाच प्रवदान कर कृपा देवो हर नाम साजना की मांगो तूर पार ब्रह्म मेरी श्रद्धा पूर सदा सदा प्रभ के गुण गावो सास सास प्रभ तुम्हें ते आवो चरण कमल स्यों लागे प्रीत भगत करो प्रभ की नित नीत एक ओट एको आधार नानक मांगे नाम प्रभ सार प्रभ की दृष्ट महा सुख होए हर रस पावे बिरला कोए जिन चाख्या से जन तृप्ताने पूरन पुरख नहीं डोलाने सुपर परे प्रेम रस रंग उपजै चाओ साध कै संग परे सरन आन सब त्याग अंतर प्रगास अंधेन लिवलाग बड़ पागी जप्या प्रभ सोए नानक नाम रत्ते सुख होए सेवक की मनसा पूरी पही सतगुर ते निर्मल मत लई जन को प्रभ होयो दयाल सेवक कीनो सदा निहाल बंधन काट मुक्त जन पया जन्म मरण दुख भ्रम गया इच पुनी श्रद्धा सब पूरी रव रहया सदसंग हजूरी जिसका साथ तिन लिया मिलाए नानक भगती नाम समाए सो क्यों बिसरै जे काल ना पाना सो क्यों बिसरै जे किया जाना सो क्यों बिसरै जिन सब किस दिया सो क्यों बिसरै जे जीवन जिया सो क्यों बिसरै जे अगन मह राखै गुर प्रसाद को बिरला लाखै सो क्यों बिसरै जे बिखते काढ़ है जन्म जन्म का टूटा गांड है गुरपुरै तत यह बुझाया प्रभ अपना नानक जन त्याया साजन संत करो एह काम आन त्याग जपो हर नाम सिमर सिमर सिमर सुख पाव हो आप जपो अवरह नाम जपाव हो भगत पाए तरिय संसार बिन भगती तन हो सीचार सर्व कल्याण सुख निध नाम बूढ़त जात पाए विश्राम सगल दुख का हो वतनास नानक नाम जपो गुणतास उपजी प्रीत प्रेम रस चाओ मंतन अंतर इही सुवाओ नेत्र हो पेख दर्श सुख होए मन बिकसै साध चरण तोए भगत जना कै मंतन रंग बिरला को पावै संग एक बस्त दीजै करमया गुर प्रसाद नाम जप लया ताकि उपमा कही न जाए नानक रहे आ सर्व समाए प्रभ बख्शंद दीन दयाल भगत वचल सदा कृपाल अनाथ नाथ गोविंद गोपाल सर्व कटा करत प्रतपाल आदि पुरख कारण करतार भगत जना के प्राण आधार जो जो जपै सो होए पुनीत भगत पाए लावे मन हीत हम निर्गुनियार नीच अजान नानक तुमरी शरण पुरख भगवान सर्व वैकुंठ मुक्त मोख पाए एक निमख हर के गुण गाए अनिक राज भोग बढ़ियाई हर के नाम की कथा मन पाई बहु भोजन का पर संगीत रसना जपती हर हर नीत भली सो करनी सो बातन मंत हृदय बसे पूरन गुरमंत साध संग प्रभ देहो निवास सर्व सुख ना

का आपे ही फिर जापष्टपदी। जब अकारे हो कछ न दृष्टे तापुन तब कहते होता, जब तारी आपन सुन समाध तब बैर विरोध किस संग कमात। जब इसका वर्ण चिन्ह न जापत तब हरख सोग कोह किसह व्यापत। जब अपन आप पार ब्रह्म तब वो कहाँ किस होवत परम। अपन खेल आप वर्ती जा नानक करना हार ना दूजा। जब होवत प्रभ केवल तनी तब बंध मुक्त कह किसको गनी। जब एक कह हर अगम अपार तब नरक स्वर्ग कह कौन अवतार। जब निर्गुण प्रभ सहज सुभाए तब शिव शक्त कहो कित ठाए। जब अप है आप अपनी ज्योत तर तब कवन निर कवन कत डर। अपन चरित आप करने हार नानक ठाकुर अगम अपार। अविनाशी सुख अपन आसन तह जन्म मरण कहो कहाँ विनाशन। जब पूर्ण करता प्रभ सोए तब जम की त्रास कहो किस होए। जब अविगत अगोचर प्रभ एका तब चित्र गुप्त किस पूछत लेखा। जब नाथ निरंजन अगोचर अगाधे तब कौन छुट्टे कौन बंधन बांधे। अपन आप ही अचर जा नानक अपन रूप आप ही ऊपर जा। जह निर्मल पुरख पुरख पत होता तह बिन मैल कहो क्या तोता। जह निरंजन निरंकार निर्वाण तह कौन को मान कौन अभिमान। जह स्वरूप केवल जगदीश तह छल चित्र लगत कहो कीस। जह ज्योत स्वरूपी ज्योत संग समावै तह किस है भूख कवन तृप्तावै। कर्ण करावन करने हार नानक करते का नाही सुमार। जब अपनी शोभा आपन संग बनाई तब कवन माए बाप मित्र सुत पाई। जह सर्व कला आप है परवीन तह वेद कतेव कहा को चीन। जब अपन आप उतार तो सगन अपसगन कहाँ विचार। जह अपन ऊंच अपन आप नेरा तह कौन ठाकुर कौन कही है चेरा। बिस्मन बिस्म रहे बिस्माद नानक अपनी गत जन हो आप। जह अचल अचेद अपेद समाया उहां किस है व्यापत माया। आपस को आप है आदेश तेह गुण का नाही परवेश। जह एक है एक एक भगवंता तह कौन अचिंत किस लाग चिंता। जह अपन आप पतियारा तह कौन कथ कौन सुन न हारा। बहु बेअंत ऊंचते ऊंचा नानक आपस को आप है पहुंचा। जह आप रचो परपंच अकार तेह गुण मह की नो विस्तार। पाप पुन तह पई कहावत को नरक को स्वर्ग बंचावत। आल जाल माया जंजाल हो मैं मोह परम पै पार। दुख सुख मान अपमान अनेक प्रकार की ओ बखियान। आपन खेल आप कर देखे खेल संकोच तो नानक एक है। जह अभिगत भगत है आप जह पसरे पासार संत प्रताप। तुहु पाका पह तनी उनकी शोभा उन्हू बनी। आप है कोतक करे अनचोज आप है रस भोगन निर्जोग। जिस पावे तिस आपन न हिलावे जिस पावे तिस खेल खिलावे। बेशुमार अथाह अगंत अतोले ज्यों बुलाव हो त्यों नानक दास बोले। सलोक जी जंत के ठाकुरा आपे वर्तन हार। नानक एको पसरिया दूजा कह दृष्टार। अष्टपदी आप कथ आप सुनने हार। आप है एक आप विस्तार जहाँ तिस पावे तां श्रेष्ठ उपाय। अपने पाणे लय समाये तुम ते पिन नहीं किछ होए। अपन सूत सब जगत परोए जाको प्रभ जी हो आप बुझाए। सच नाम सोई जन पाए सो समदर्सी तत् का बेता। नानक सगल श्रेष्ठ का जेता जी जंत्र सब ता कह हाथ। दीन दयाल अनाथ को नाथ जिस राख है तिस कोय न मारे। सो मुआ जिस मनोह बिसारे तिस तज अवर कहा को जाए। सब सिर एक निरंजन राय जी की जुगत जा कै सब हाथ। अंतर बाहर जानो साथ गुण निधान बेअंत अपार। नानक दास सदा बलिहार।
पूरन पूर रहे दया, सब ऊपर होवत कृपाल, अपने कर्तव्य जान आप, अंतरजामी रहे हो व्याप। प्रतपाल जीयन बहु पांत, जो जो रचियो सुत सहत्यात, जिस पावे तिस लय मिलाए, भगत करहे हर के गुण गाए। मन अंतर विश्वास कर मानिया, करनहार नानक एक जानिया, जन लागा हर एक नाई, तिसकी आस न बिरथी जाए, सेवक को सेवा बन आई, हुकुम बूझ परम पद पाई। इसते ऊपर नहीं विचार, जाके मन बसया निरंकार, बंधन तोर पय निर्वैर, अंधन पूजह गुर के पैर। एह लोक सुखिए पर लोक सुहेले, नानक हर प्रभ आप है मेले। साध संग मिल कर हो आनंद, गुण गाव हो प्रभ परमानंद, नाम नाम तत् करो हो विचार, दुर्लभ देह का करो हो उदार। अमृत बचन हर के गुण गाओ, प्राण तरन का यह सुवाओ, आठ पहर प्रपेख हो नेरा, मिटे अज्ञान बिनस अंधेरा। सुन उपदेश हृदय बसाव हो, मन इच्छे नानक फल पाव हो, हलत पलत दोयले हो सवार, राम नाम अंतर और तार, पूरे गुर की पूरी दीखिया, जिस मन बसा तिस साच परीखिया। मन तन नाम जप हो लिव लाए, दुख दर्द मन ते पहु जाए। सच व्यापार करहु व्यापारी, दरगह निभ खेप तुम्हारी, एका टेक रखहु मन माही, नानक बहुर नाव है जाहे। तिसते दूर कहाँ को जाए, उपर रखन हार ते आए, निरपो जप सगल पौ मिटे, प्रभ कृपा ते प्राणी छुट्टै। जिस प्रभ राखै तिस नाही दुख, नाम जपत मन होवत सुख, चिंता जाए मिटै अहंकार, तिस जन को कोय न पहुँचन हार। सिर ऊपर ठाडा गुरसूरा, नानक ताके कारज पूरा। मत पूरी अमृत जाकी, देश दर्शन पेखत उदरत श्रेष्ठ, चरण कमल जाके अनूप, सफल दर्शन सुंदर हर रूप। तन सेवा सेवक परवान, अंतर जामी पुरख प्रदान, जिस मन बसे सोत निहाल, ताके निकट न आवत काल। अमर पहे अमरा पद पाया, साध संग नानक हर त्याया, सलोक ज्ञान अंजन गुर दिया, अज्ञान अंधेर विनाश, हर कृपा ते संत भेटिया, नानक मन पर गास। अष्टपदी। संत संग अंतर प्रभ दीठा, नाम प्रभु का लागा मीठा, सगल समग्री एक स्कट माहे, अनिक रंग नाना दृष्टा है। नौ निध अमृत प्रभ का नाम, देही मह इसका विश्राम, सुन समाद अनहत तह नाद, कहन ना जाई अचर्ज विस्माद। तिन देखिया जिस आप दिखाए, नानक तिस जन सो जी पाए। सो अंतर सो बाहर अनंत, कट कट व्याप रहया भगवंत, धर्म माहे आकाश पया, सर्व लोक पूरन प्रतपाल, बंतिन पर्वत है पार ब्रह्म, जैसी आज्ञा तैसा कर्म। पौन पानी बैसंतर माहे, चार कुंट दह दिसे समाहे, तिसते पिन नहीं कोठाओ, गुर प्रसाद नानक सुख पाओ। वेद पुराण सिमरत मह देख, ससियर सूर नक्षत्र मह एक, बाणी प्रभ की सबको बोला, आप अडोल ना कबहूं डोला। सर्व कला कर खेल खेल, मोल ना पाइये गुण है अमोल, सर्व ज्योत मह जाकी ज्योत, तार रहो स्वामी ओत पोत। गुर प्रसाद परम का नास, नानक तिन मह एहो विसास, संत जना का पेखन सब ब्रह्म, संत जना का हृदय सब धर्म। संत जना सुनह शुभ बचन, सर्व व्यापी राम संग रचन, जिन जाता इसकी यह रहत, सत बचन साधु सब कहत। जो जो हुए सोई सुख मान, करन करावन हार प्रभ जान, अंतर बसे बाहर पी ओही, नानक दर्शन देख
सब मोही। आप सत किया सब सत तिस प्रभ ते सगली उत्पत। तिस पावै ता करे विस्थार, तिस पावै ता एकंकार। अनेक कला लखी नह जाए, जिस पावै तिस लय मिलाए। कवन निकट कवन कहिए दूर, आपे आप भरपूर। अंतर्गत जिस आप जनाए, नानक तिस जन आप बुझाए। सर्व भूत आप वर्तारा, सर्व नैन आप देखनहारा। सगल समग्री जा कतना, आपन जस आप ही सुना। आवन जानक खेल बनाया, आज्ञाकारी की नीमाया। सब कह मध अलिप्तो रह, जो किछ कहना सो आपे कह। आज्ञा आवे आज्ञा जाए, नानक जा पावे ता लय समाय। इसते होए सो नाही बुरा, ओरै कहो किने कछ करा। आप भला करतूत अतनी की, आपे जान अपने जी की। आप सास धारी सब साच, ओत पोत अपन संग राज। ता की गत मित कही न जाए, दूसर होए ता सो जी पाए। तिसका किया सब परवान, गुर प्रसाद नानक एहो जान। जो जाने तिस सदा सुख होए, आप मिलाए लए प्रभ सोए। ओहो तनवंत कुलवंत पतवंत, जीवन मुक्त जिस हृदय भगवंत। धन धन धन जन आया, जिस प्रसाद सब जगत तराया। जन आवन का यह सुहाओ, जन कै संग चित आवै नाओ। आप मुक्त मुक्त करै संसार, नानक तिस जन को सदा नमस्कार। सलोक।

अष्टपदी। पूरे गुर का सुनो उपदेश, पार ब्रह्म निकट कर पेख, साथ साथ सिमरहु गोविंद, मन अंतर की उतर चिंद। आस अनित त्याग हो तरंग, संत जना की तूर मन मंग, आप छोड़ बेंती करो, साध संग अगन सागर तर हो, हर तन के पर लेहो पंडार, नानक गुरपुरे नमस्कार। खेम कुशल सहज आनंद, साध संग पज परमानंद, नरक निवार उदार हो जियो, गुण गोविंद अमृत रस पियो। चित चित वो नारायण एक, एक रूप जाके रंग अनेक, गोपाल दामोदर दीन दयाल, दुख पंजन पूरन कृपाल, सिमर सिमर नाम बारंबार, नानक जी का यह आधार। उत्तम सलोक साध के बचन, अमलीक लाल यह रतन, सुनत कमावत होत उदार, आप तरह लोक कह निस्तार। सफल जीवन सफलता का संग, जाके मन लागा हर रंग, जय जय शब्द अनाहत वाजय, सुन सुन आनंद करे प्रभ गाजय। प्रगटे गोपाल महांत कै माथे, नानक उधरे तिन कै साथे, सरन जोग सुन सरनी आए, कर कृपा प्रभ आप मिलाए, मिट गए बैर भय सब रेन, अमृत नाम साध संग लैन। सो प्रसन्न पय गुरुदेव, पूरन होई सेवक की सेव, आल जंजाल विकार ते रहते, राम नाम सुन रसना कहते, कर प्रसाद दया प्रभ तारी, नानक निभी खेप हमारी। प्रभ की उस्तत करो संत मीत, सावधान एकाग्र चीत, सुखमनी सहज गोविंद गुण नाम, जिस मन बसे सोहोत निदान, सर्व इच्छा ताकि पूरन होए, प्रधान पुरख प्रगट सब लोए, सब ते ऊच पाए अस्थान, बहर न होवे आवन जान, हर तन खाट चल जन सोए, नानक जिस है प्राप्त होए। खेम शांत सृद्ध नव निध, बुद्ध ज्ञान सर्वतः सिद्ध, विद्या तप जोग प्रभ ध्यान, ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम इशनान, चार पदार्थ कमल प्रगास, सब कै मद सगल ते उदास, सुंदर चतुर तत् का बेता, समदर्शी एक दृष्टेता, एह फल तिस जन कै मुख पने, गुरु नानक नाम बचन मन सुने, एहो निधान जपै मन कोए, सब जुग में ताकी गत होए, गुण गोविंद नाम तुन बाणी, सिमरत शास्त्र वेद बखाणी, सगल मतांत केवल हर नाम, गोविंद भगत कै मन विश्राम, कोट अपराध साध संग मिटै, संत कृपा ते जम ते छुट्टै, जा कै मस्तक कर्म प्रभ पाए, साध शरण नानक ते आए, जिस मन बस सुन लाए परीत, तिस जन आवे हर प्रभ चीत।

बनी सब ते ऊचता की शोभा बनी नानक एहे गुण नाम सुखमणि। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निरवैर अकाल मूरत अजून।

सीति सच। सोचा सोच न होवई जे सोची लख वार, चुपै चुप न होवई जे लाए रहा लिवतार। भुखियां भुख न उतरी जे बन्ना पुरियां पार, सहस सियाणपां लख होए ता।

तेरे महान है, निर्धान है, तेरे वर्ग है, असर्ग है, अनिल है, अनाद है, अजय है, आजाद है, अजन्म है, अवर्ण है, अभूत है, अभर्ण है, अगंज है, अपंज है, अजूज है, अजंज है, अमीक है, रफीक है, अदंध है, अबंध है, निर्बूज है, असूज है, अकाल है, अजाल है, अला है, अजा है, अनंत है, महंत है, अलीकेंद्र श्रीकेंद्र लंभ है, असंभ है, अगम है, अजम है, अभूत है, अछूत है, अलोक है, अशोक है, अकर्म है, अपर्म है, अभीत अजीत है, अभीत है, अबा है, अडा है, अमान है, निधान है, अनेक है, फिर एक है, कुजंग प्रयात छंद, नमो सर्वमान्य समस्ति निधान है, नमो देव देवे अपेकी अपेवे, नमो काल काले, नमो सर्व काले, नमो सर्व गौणे, नमो सर्व पौणे, अनंगी अनाते निरसंगी परमाते, नमो पान पाने, नमो मान माने, नमो चंद्र चंद्रे, नमो पान पाने, नमो गीत गीते, नमो तान ताने, नमो नृत नृते, नमो नाद नादे, नमो पान पाने, नमो बाद बादे, अनंगी अनामे समस्ति स्वरूपे, प्रपंगी परमाते समस्ति विभूते, कलंकंक बनाने कलंकी स्वरूपे, नमो राज राजेश्वरम परम रूपे, नमो जोग जोगेश्वरम परम सिद्धे, नमो राज राजेश्वरम परम वृद्धे, नमो शस्त्र पाणे, नमो वस्त्र पाणे, नमो परम ज्ञाता, नमो लोक माता, अपेकी अपरमी अपोगी अपोक्ते, नमो जोग जोगेश्वरम परम युक्ते, नमो नित नारायण क्रूर कर्मे, नमो प्रेत अप्रेत देवेशु कर्मे, नमो रोग हर्ता नमो राग रूपे, नमो शाह शाह नमो पूपे, नमो दान दाने, नमो मान माने, नमो रोग रोगे, नमो संशनान, नमो मंत्र मंत्र, नमो जंत्र जंत्रं, नमो इष्टिष्टे, नमो तंत्र तंत्रं, सदा सचिदानंद सर्वं परणासी, अनूपे अरूपे समस्तलंबासी, सदा सिद्धा बुद्धा बृहद कर्ता, अधो ऊर्ध अर्धं अगं ओघर्ता, परम परम परमेश्वरं पुरुष पालं, सदा सर्वदा सिद्धाता दयालं, अचेदी अपेदी अनामं अकामं, समस्तो पराजी समस्तास्तामं, तेरा जो चाचरी छंद, जले हैं तले हैं, अभीत हैं अभे हैं, प्रभु हैं अजू हैं, आदेश हैं अपेश हैं, उजंग प्रयात छंद, अगाधे अबाधे अनंदी स्वरूपे, नमो सर्वमाने समस्ते निधाने, नमस्तुं निर्नाते, नमस्तुं परमाते, नमस्तुं अगंजे, नमस्तुं अपंजे, नमस्तुं अकाले, नमस्तुं अपाले, नमो सर्वदेशे, नमो सर्वपेशे, नमो राजराजे, नमो साज साजे, नमो शाह शाहे, नमो माह माहे, नमो गीत गीते, नमो प्रीत प्रीते, नमो रोक रोके, नमो शोक शोके, नमो सर्व रोगे, नमो सर्व भोगे, नमो सर्व जीतंग, नमो सर्व पीतंग, नमो सर्व ज्ञानंग, नमो परम तानंग, नमो सर्व मंत्रंग, नमो सर्व जंत्रंग, नमो सर्व दृश्यंग, नमो सर्व कृत्संग, नमो सर्व रंगे त्रिपंगे अनंगे, नमो जीव जीवंग, नमो बीज बीजे अखिजे अपिजे, समस्तंग प्रसिजे, कृपालंग स्वरूपे कुकर्म प्रणासी, सदा सर्वदा हृत सिद्धंग निवासी, चरपट संता प्रसाद, अमृत कर्मे अमृत तर्मे, अखाल जोगे अचल भोगे, अचल राजे अटल साजे, अखाल तर्मंग अलाग कर्म, सर्वंग ज्ञाता सर्वंग दाता सर्वंग ज्ञाता, सर्वं पाने सर्वं माने, सर्वं प्राणं सर्वं त्राणं, सर्वं भुक्ता सर्वं युक्ता, सर्वं देवं सर्वं पेवं, सर्वं काले सर्वं पाले, रुवाल शंतव प्रसाद, आद रूप अनाद मूर्त जोन पुर कपार, सर्वमान त्रमान देव पेवे आदुदार, सर्वपालक सर्वकालक सर्वकोपन काल, यत्र तत्र विराजे अवधूत रूप रसाल, नाम ठाम न जात जा करु प्रंगना रेख, आद पुरुख उदार मूर्त अजो नाद शेख, देश और न फेस जा कर रूप रेख न राग राग, जतर तत्र दिशा विशा हो फैले अनुराग, नाम काम विहीन पेख ताम हो न जाए, सर्वमान सर्वत्र मान सदा मान ताय, एक मूर्त अनेक दर्शन कीन रूप अनेक, खेल खेला खेल खेल अनंत को परेक, देव देव न जाने जे वेद और कतेब, रूप रंग न जात पात सो जाने के जीव, तात्मात न जात जाकर जन्म वर्ण विहीन, चक्र बकर फुर चत्र चक माने पुरतीन, लोक चौदह के बिखै जग जा पई जे जाप, आद देव अनाद मूर्था प्य सब।

हर हर करत नहीं दुख जम है रहाओ। हर हर नाकस हरे प्राण अजय मल कियो बैकुंठ थान। सुआ पढ़ावत

कवन बुझै बिद जाणै, उत भुज चलत आप कर चीनै, आपे तत् पछाणै, ऐसा ज्ञान विचारै कोई, तिस्ते मुक्त परम गत होई। रहाउ दिन मह रैन रैन मह दिन यर, उसन सीत बिद सोई।

एक ओंकार सतगुर प्रसाद राम कली महला तीजा घर पहला सतयुग सच कह सब कोई घर घर भगत गुरमुख होई सत

सब जुग मह नाम उत्तम होई, गुरमुख विरला बूझ है कोई, हर नाम त्याए भगत जन सोई, नानक जुग

किया। जिस वड भाग हुआ वड मस्तक, तेन गुरमत कड कड लिया। रतन जवेहर लाल हरनामा, गुर काड तली दिखलाया। भागहीन मन मुख नहीं लिया, तृण ओ लै लाख छपाया।

राम कह जन ऊचे, नर निंदक डंस लगाए, त्रिग त्रिग नर निंदक जिन जन नहीं पाए, हर के सखा सखाए, से हर के चोर वे मुख मुख काले, जिन गुर की पैज न पाए, दया दया।

तिन ऊपर हाथ बतावै, गुरमुख साध सेई प्रभ भाई, कर कृपा आप मिलावै। राम मुको हर जन मेल मन भावै, अम्यों अम्यों हर

जित नानक संत चढ़ आवै। राम कली महला चौथा। जे वड भाग हुवै वड मेरे, जन मिलदिया ढिल न लाइए। हर जन अमृत कुंट सरनीके, वड भागी तित

पर न कोई मिल सतगुर पुरख त्याई सतगुर चरण सतगुर शरण परे तिन पाया मेरे ठाकुर लाज रखाई है एक अपने सुआए एक अपने सुआए आए बह गुर आगै ज्यो बगुल समाद लगाई है बगुला काग नीच की संगत जाए करंग भिखु मुख लाई है नानक मेल मेल प्रभ संगत मिल संगत।

तही प्रकाश हमारा पयो। पटना शहर बिखै पौलयो। तन तन साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज साहिब कमाल जिन्हां दा प्रकाश पुरब सारे संसार दे विच बड़ी श्रद्धा भावना नाल मनाया जा रहा है, मना रहे हां। कलगीधर पिता जी जदों साहिब जी दा आउणा पटना दी धरती ते साहिब जी दा प्रकाश होया ते कहिंदे ने पीर भीखण साहिब जिहड़ा अंबाले दे नजदीक बसदा है, अज सिजदा चढ़दे पासे नूं कर रहा है। नाल दे संगी साथी हैरान हन, अज पीर जी नूं की हो गया है। आपां वेंदे हां क्योंकि इह लहिंदे पासे नूं सिजदा करदे हां, पर अज पीर भीखण साहिब बार बार सिजदा कर रहा है। जदों नाल दे संगी साथियों ने पूछा, पीर जी की गल, ठीक हो? अज आप जी चढ़दे पासे वल सिजदा कर रहे। कहंदे ने जिसनू मैं सिजदा कर रहा हां, इस दुनिया दा मालक, वो अज पटने दी धरती ते उसने आउणा कीता है। कोई बंदगी वाली रूह, जुड़ी हुई रूह, जिसनू पता है, जिदे मन विच तरला है कि मैं उस परिपूर्ण परमेश्वर प्यारे नू मिलना है। बंदगी तां आपां सारे करदे हां, पर बंदगी इहो जी होवे जिदे नाल पता लग जाए कि मेरा मालक किथे है, नेड़ा है दूर ना जाने, नित सारे संभाले, नेड़ा है ना ही दूर। जो इहो जी बख्शिश हो जाए, पीर भीखण साहिब कहिंदे ने 3 महीने तकरीबन लगे ने तुर पए, उस वक्त इतने साधन नहीं सन, तुर के लोग की यात्रा करया करदे सन। तुर पे तुरे जा रहे हन उस मालक दे कलगीधर पिता जी दे गुण गाउन दे। जदों उत्थे पहुंचे, दर्शना दी इजाजत मंगी ते नाल कहिंदे ने 2 कुजियां विच परखण लई भी कलगीधर पिता जी वल हथ वधाए ते दोवें कुजियां ते साहिब जी ने हथ रखना कीता। कहे मैं सारे ए अवल अल्लह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजिया कौन पले को मंदी, ऐसे सतगुरु दीन दयाल सतगुरु। कलगीधर पिता जी बाल अवस्था विच उन्होंने निर्णय किया कि असी सारे संसार के भले लई दोस्त दोखियन पकड़ पछाड़ो, हमरे सब बैरियन संघारो। जिहड़ी बाणी लिखी है उसते नितरे ने दुष्ट दोखियां का खात्मा किया। बाए गही की लाज अस गोबिंद दास तुहार, साड़ी रखिया साड़ी लाज रखी, हिंदुस्तान की लाज रखी, भावे अपना सारा ही परिवार कुर्बान कर दिता। दीनन की प्रतपाल करे संत उबार गनीमन गारे। दीन आख दिन जिदा कोई आसरा ना हो, साहिब नितानिया का तान आए ना जाई थिर सदा, गुरसबदी सच जान। कलगीधर पिता जी ने साढ़े लई
ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਟਨੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਿਨ ਦੀਵਾਨ ਸਜਣੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਆਪ ਜੀ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਓ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮਾਪਤ।

सतगुरु महाराज कृपा करन, हर साल ये शहीदी दिहाड़े बाबा अजीत सिंह जी, बाबा जुझार सिंह जी, बाबा जोरावर सिंह जी, बाबा फतेह सिंह जी, माता गुजर कौर कैसे हिरदे सन, इना दे माता साहिब कौर, माता सुंदरी जी, माता जीतो जी, धन गुरु गोबिंद सिंह जी, धन गुरु तेग बहादुर साहब जी। ऐसा ना हो वे साल लंघ दे जान पर साडा जीवन ना बदले, गुरु दे होर भी नेड़े होइए, सुहास सुहास जपिए, सतनाम श्री वाहिगुरु। फतेहगढ़ साहब चमकौर की गड़ी नूं हमेशा अपने अंदर वसा के रखिए, वह साडे वास्ते यूनिवर्सिटी है, सिक्खी का स्कूल है। आओ बड़े प्यार नाल कीर्तन की सेवा भाई साहब जी, भाई हरप्रीत सिंह जी हाजरियां भरनगे। बेअंत पुल चुक दी खिमा असीस देव, फतेह बुलाओ। वाहिगुरु जी का

मन नू जे कोई सकून शांति दे सकता है वो महाराज दा नाम है। और ऐसी कोई पावर नहीं, ना पैसा, ना पदार्थ, ना तन दौलत, ना शोहरत, जे तेरे अंदर कोई चैन ते टिका बख्शिश कर सकता है वो सतगुरां दा नाम है। प्यार नाला खुद सतनाम श्री है। महाराज कह रहे ने तेरी आत्मा दी, तेरे जी दी जिहो जी भी इच्छा हो, रब ना करे कदे कोई औखा समा भी होवे ना तां भी अरदास कर। अक्सर लोकी दुखां विच ही अरदास कर रहे ने, सुखां विच। सतगुरु कह रहे ने दुख तदे जां विसर जाए। दुख तां आउंदे ने जदों तू उन्हूं भुल जांदा है। वड्डियां वड्डियां खुशियां विच फिर आपां शुकराना भुल जांदे। ऐसे ऐसे परिवार भी मौजूद ने। अपनी बेटी दी मैरिज है, ब्याह है, पर प्यो सारी पार्टियां सारे रिश्तेदार छड़ के अपना नेम निभाण चले जाता है। सारे रिश्तेदार कहंदे ने कित्थे चलिया गया, ते जिहड़े जाणदे सन ओह कहंदे ने भी दुनिया इधर दी इधर हो जाए उन्हें नेम नहीं छड़ना। अपनी बेटी दा ब्याह है पर नेम कुछ समय लई मिलन वास्ते अपना नेम निभाउण चले गए। जदों आए ते पुछया तुसी किथे चले गए सी, ते फिर हाथ जोड़ के नीवी पा के कह दिता जिसने ये खुशियां दित्तियां उहदा शुक्र करन गया सी। जिन्ने ये विध बनाई उहदा शुक्र करन गया सी। सतगुरु कह रहे ने कल्ला खुशियां दा मौका ही नहीं, कल्ले पदार्थ ही नहीं, मन नूं भी ऐसी बख्शिश मिलती है। इंज लगता है भी तू ही बादशाह है, तेरे नालों सुखी कोई नहीं, तेरे वर्गा कोई होर नहीं। जेड़ा सबर चैन तेनू मालक ने दिता वो किसी होर को नहीं। एक बारी पावन पंक्तियां कह दियो सारे, मिलदा पता कितों है। सो लगा सतगुरु सेव जा को करम तुर, जिन्हां दे कर्मां विच लिखिया होया सतगुरां दी सेवा, सतगुरां दे वचनां नू जिंदगी विच कम।

करो कृपा एक बार, एक बार दास बोलेगा, एक बार सारी संगत ने बोलना है। हाल बहुत बड़ा है, तुसी बोल रहे होगे मेरे कन्ना च आवाज नहीं आ रही है, सो बेनती है एक बार असी बोलांगे, एक बार तुसी बोलना, असी बोलांगे तुसी ना बोलना, तुसी बोलोगे तो असी नहीं बोलना। आप गाण वास्ते आए हैं, फिर एक शब्द की हाजिरी होर भर के बहुत ही सत्कार हो गुरु रामदास महाराज जी के वरसाए कीर्तनी भाई साहब भाई इंदर जी सिंह जी खालसा जी, वह भी पहुंच चुके हैं, दस दिन के बाद उन्होंने हाजिरी भरनी है। सो करो कृपा उची आवाजाएं चो।

उस सेवक नू कोई भी दुख पौंदा नहीं जिस सेवक दे सिर ते सतगुरु दा हाथ हुंदा है। सतगुरु जी बाणी च फरमान करदे ने, सब सहे उपर नजर प्रभ तेरी, किसे थोरी किसे है कनेरी। निगाह सतगुरु दी सब दे उपर है, कृपा बरस रही है, पर किसी ते थोड़ी है, पर किसी ते बहुत है। जिदे ते बहुत है, जिदे ते सतगुरु की प्रसन्नता है, सतगुरु जी तुट के उसनों सतसंगत की दात देंदे ने, नाम की दात देंदे ने, अपना बना लेंदे ने। उस सेवक दे सतगुरु जी सारे कार्य रास करदे ने। यही नहीं कि लोग सुखिए पर लोग सुहेले, नानक हर प्रभ आपे मिले। उस अपने सेवक दे इलोक ते परलोक दोनों ही सहेले कर देंदे ने, किदे जिदे ते सतगुर दी नजर करे रही है। जो सेवक सतगुरु नूं समर्पित हो जाता है, जो सतगुरु के वचना ते सेवक चलता है, गुरु उस दे उपर कृपा करता है। गुरु प्यारे, मैं एक गल जरूर कह दिया, हर एक इंसान की कोई ना कोई भटकना है। कोई किते भटक रहा है, कोई किते भटक रहा है, कोई किसी नूं रब मानी बैठा है, कोई किसी नूं रब मानी बैठा है। जिन्ना चिर इंसान ये ओट आसरे बारले तकदा है, उन्ना चिर ये इंसान ये जीव धक्के खांदा है। किदां धक्के खांदा है? फिर एक जोन विच नहीं जांदा, अनंत जोना भोगदा है। पातशाह जी बाणी विच सानू फरमान करदे ने कि देखो, ईमान सुजन्म दुलंभ है, होए ना बारे बार।